0: लागु का पद भाई
1: हमको हमें सिंचुलाल
0: हमको हमें सिंचुलाल हो तुझे का साप हो तू भाई
1: तुझे पाया मुझे बात को मैंने दियो
0: मैंने
1: लगभग वहाँ पे एंजॉय मैंने दियो आपने दियो
0: जो
1: बोलो बोलो कन्युमा
0: ना
1: एंजॉय करता दियो
0: जो
1: Terima
0: kasih Pak Irion. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Isa Pak Mangi ini. Tengah-tengah hari jam 10.32 minit dengan lagu Hamko. Mari kita ikuti semangat. Hamko Hami Senturaro.